0: तो महारे अदे भी कहाँ आ रे यो तो कौन तो के आ रे आवे में बेरो महारे
1: Bonitinhos FM.